नारायण हे पराय का काम गणपति हजुरा देखे मने मलाई जो कब के वसंग गोकुल में लगा उसे पर्च नारायण यहां।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: ना निकेश क्या यार हीरोइन तो सिंगर ले लोगे आलिया और मुख्य बन सिंगर बनने
1: जीवन जी क्या है सर
0: हीरो आई क्या है ओके